दुखी ब्रह्म न कोई एक घर माथी ये दलित्री अति थिए बालक तीन पुत्र उनका आपू दुई दंपति सलाह करी ज्येष्ठ बाबू तीरा।

आए फेरी वरुणजी दृढ़ रूप धारी, पूजा करे निरपति ले गरी भक्ति बारी। विनती करे वरुण को सब दात आओस, यो पुत्र यज्ञ पशु लायक हो जाओ। दात मृदिनु छैन बलि भनेर, देखिन्छ शस्त्रहरूमै कुरा सुनेर। यति भनी वरुण घरतिर फर्की आए, राजा खुसी भइन्वार नगर नलाए।

0: दुर्ग प्रसाद सेवापति कानून के साथ श्रृंखली शुरू सारा सुबह में की नारी करत दिन भारी विपत्ति ले पति से ऊंचाई विनती कर चिंके पिटर ले गुरु देवता राजा और पुन भला मान सका निदान खाली हर बंकन कहीं ज्योति समान देवू के ही सौगर मन देवत चंगा कर चौधरी का हर्षित मुलाका नगर में इच्छा वर्तन में विचार मुठबे तम्बू जमा कर दी सही तम्बू ली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका में
1: नारायण
0: जनो बालक ओ जननो बालक ओ जगन

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: Media Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: नमस्कार रेडियो शैलो सामुदायिक एफएम पहले भी थोपलो साथ में गया बाटो मु बद्र प्रसाद साहब कोट आज विक्रम संबत 2083 साल भाद्र कृष्ण पक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 3 तारीख भाद्र 18 गते बिहीबार सप्तमी तिथि अब स्तुति करो
1: आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो सक्षण कल्पय भरी

राजा नौश का इशारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मन राखुन सवाले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कई काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मनुन बढ़ाले पनि कृति उज्ज्वल होस श्रुत सहित का

0: भगवते वासुदेवाय नमः हरि परमात्मा।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शङ्ख कपाला भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ द्वारौ तिस्मशान ननिलौ नागरी गोवर्धनौ तिरिदक्षे बलिदक्षे।

थाई उछिंदे हुदाई सरात दियूंसो हफ्तार महीना बनी थाई हुनाने का काम गर्दा बेला बीते को पनी नारायण।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: रात माते पांडव वसुन कुमा वसुन कालिका गोरच गरुन र दानवहरू नागमा रहन नासिका सञ्चल भैगुमनि दशिन्द्रियहरू तिम्रा भजनमा भोलोस्।

गई माँ बिगमाली ले जुजुटीरा कहाँ मुहिले बिराए भानी कि मेरा दुई बाहु माता ठोकी दे जन्म बापला तेरो आनी तो करना दुई तो धन को भदुआ।